0: चल गए
1: बोले
0: चल गए चल गए चल गए
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.